0: खर छर जाना बजीस राजू अंत पा खंड में या न तो आमा खासिया में या आरों तक खुश लाना सजो ना शून्ति ने सरदार आते हजुआ जो उधर देंगे चंचा फामा आते ने क्या आरो जो मर भी मना अरका चंचे ना शक हर देवा है ना शक खे देवा हामा चों चो ना तो आवी चिक नो नो रहना रंग हामा आते ने क्या ना सोसो शक जब यो जना आरो ता जस्ता मना गोकुल मना शुभता मना न यारब चदंग न जागो ना तो तुम पर हाशिए तो ने लेतों जिम्मे चितों दबशे थने जगल आके सिकारे लाका गारी चालामे लाका गेरी यहाँ शिफ्ट के गुआं जो शिक्क माजी खाना यही खाना बांच जो शिफ्ट खाना बंच जगह ने गा सजे ता जना गा हमारे ने सबसे ये क्वाज़ गा रानी चंचल ना ने सबसे ये क्वाज़ जब तास ते यहाँ तक तो गा कचा गा हमारे ने को सबसे यंस ते दाना ता दांगा तेरे शुंग हिली हितो के हटाम जो अयली चक्कर के खाज़ काना хтэн кару кэр кан агона жга лгмару кава сажгна хтам кэрэм чэн гожгна хтяна канан банз цигна да чэш утна банз ца хтам чэш утна цагз цигна нэхши мэккара дамна шып шыгрым яна хумо нэгалана давчих тайгна нга ронг чэса чи паса паир нга амчих сача гы шырти мэрти нга дева туа нга хэнэлэг ихтурма нга нам сэнжирдэг шама нга хэ карти саса нга ка хэ кати руро ngawa ka hik ge jma ya nga ha ka ti ge sha che ngawa ka tam ka ku du ta su a de ho ta ce so so shi ga na jap ta ja na de wa chwa ga ngwa ta ce she ka shu sha se ji se ya na ga pa ta to san ji ga ju ya a zhe me ta ju xiu mo xia ju ne sha ju sa la ter ku ju ti ngwa de ho na ba zo na ko ram gu cha ta ce so so ye kwa ze jap ta ka ga ta wer te nga ma sha ge ka cha khar se nga ma du bo ro mo pe se ང་ཚེ་ཅབ་ཅ་ཤ་ཁན་ཏོ་ང་གཅབ་ཅ་ཏ་ཁལན་ང་ཅ་ཤ་ཅིག་ཅ་བ་ང་ཏོ་ཤ་ཨོ་མེ་མ་ལུ་ང་ཚེ་ཅ་ཏོ་ཏ་ཁ་ཁེལི་ཤ་བ་ཅ་ཅ་ཏ་ཁན་པ་བལེ་ཏ་ང་མ་མ་ཁ་གི་ཤ་མ་ཡང་ང་ཅབ་ཅན་ཁ་ཁལ་གི་ཡ་ཁ་ང་ལོབ་སུ་ཁ་ཡ་མོ་ཁ་རི་གན་ཅབ་ཏ་ཡ་ཁ་སམ་པ་མོ་ཤ་ཟར་ཅན་ན་ཁན་ན་ཁ་མོ་རལ་ཅ་མོ་ ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པའི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ 我想过个他家修错个样子，咱这个建筑没得个干处，还过个干道路，哎呀，过个通道路，蛤蟆个、蛤蟆个脚，二个个当的多，我过过我那啥子来呀？我二个个那啥子来呀？对他那，我上个那啥子用的那是，我俺们这种的妈妈啥子用的那是，做啥子用的？过人过车的那是，我也让他等，我家个个穿的，这些男的。 咋讲个样子呢？那怎么还能想那个这样子？俺屋里这个，这下干那个人别管多，那账目账家，那还有这买的，身上别带那啥买的，俺家里那那得买的，那账目账家的呢，吃吃些金子板的给俺们，这样意思。完了，俺家里这些那看的给俺们这样，完了，那也让他当是麻将呢。
1: 可是个大人呀，那些个个小人呀，那看着可那个，都像几个那十八九的，那九个那上千多的，呀，都不下千么子呢？我那个没千么子呢？这吃还没看了这个面呢？啊，这个吃么子呢？都做，啊，老个那长得奇怪，啊，这个长得还不，啊，这个吃么子做了，都不下千多做，这家个还没看了这个么样呢？他，没那个叫他妈嘞，也人们家那突然间那他。